0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qian de ngo ni xi li no le chan chan jin zhu de ni zhe ni xia zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जुब सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यू से जेजो लंका का मांस दे जिना नो येंदा ला यांस से चाव रियो होयो मजो जो जटा मुन्यो दो संग तंगा मोटा तो तो मट ताते ले गेम गने जेजो लंका बि पेंडो रे
0: जे जे तंगा ह गिंग के का शाम बत की छि इन रो तिन मोनी ला सान रो रे
1: और रे रे रे
2: लंका
0: के तो तो हमें चाय या बस के ना जे पिन
3: 好有了把做金不没有委屈场面记住蓝阔了马子有呢也不有这句蓝阔毛那样电影这句沙瓦一句蓝阔可得牛子千里过得没动啊当可得金金多了没动啊出来多你可得没动啊可得公个
4: 三门也往记下去